शंकर इकैठा शीघ्री श्रेष्ठ दिखाए अचम पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो राण काता जे आस तोज।

रक्षा होय ता हे शुभ काला दुष्ट अरिष्ट टरे तात काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहरे हो ताके ताप तनक मह हारे हो रिद सिद्ध करमो साब होई दुष्ट शाह श्वै सकै ना कोई एक बार जिंतु मैं संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्ब ठौर मोहो हो सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुझ जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तात काला मन बांशत फल पावे सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई सुने मूड चेत लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट ना तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्रो पखयाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजू दोहरा दास जान कर दास पर कीजै कृपा अपार आप हाथ दे राख मोह मन करम बचन विचार चौपई मैं ना गणेश प्रथम नाऊं किसन बिसन कबहू नह त्याऊं कान सुने पहचान ना तिन सो लिव लागी मोरी पग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहें गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रात परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग मैं दू चलै राख आप मोहे और ना दलै तुम मम करो सदा प्राते पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे।

हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम धरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता बेद नाना। कृष्ण जथा मात चरित्रो उचारो, चूक होए कब लिहो सुधारो। कवि उवाच दोहरा, जो निज प्रभ मोसो कहा, सो कहे हो जग माहे। जो ते प्रभ को त्याय है, अंत सुरुग को जाहे। दोहरा हर हर जन दोई एक है, बिब विचार काश नाहे। जल ते उपज तरंग ज्यो, जल ही बिखै समाहे। दोहरा जब आयस प्रभ को पयो, जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेपते, सब हूं कहत सुनाए। कब बाच दोहरा,

भगवंत दोहरा काल पुरुख की देह मोह कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रावसस क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जोग जोग अटल सब कोई भाखत नेत सुरगुबास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो हे कथा सुने आर गावे दुख पाप तेह निकट ना आवे विष्णु भगत की ए फाल होई आद ब्याद श्वे सकै ना कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन त्वै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार सुतुद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया

सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो ता गाव हो हरि केरा मान जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया।

मनहु विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै, घरता तेरै सब किश है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम।

चारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब साधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित राख उरतारो तम संसार चरण लाग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग कीतोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तां जीवा तान मान थी वै हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुनकै जम के दूत नाए तेरे छड जाहे भवजल बिखमा सगाहो

मूरत हर गोविंद सवारी चली पीड़ी सोडिया रूप दिखावन वारो बारी दाल भंजन गुर सूरमा बड जोदा बहु पर उपकारी दल भंजन गुर सूरमा बड जोदा बहु पर उपकारी वाहिगुरु साहिब जी सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी

खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या भाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोहा के बोलन बोलियै जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानियै सब आपे सचियार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मान रखियै भाओ दुख पार हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई

0: सत्संगत सतगुरु मेहर आमद करन, सानू भी इस तरह अरदास करनी आ जावे जिस तरह भट्ट कीरत जी अरदासा करदे, सतगुरु हम अवगुण भरे एक गुण ना ही, सतगुरु कोई गुण नहीं है, अवगुणा दे भरे हां। अमृत छाड़ विखै बिख खाई, तेरे अमृत रूपी नाम नू छड़ के विषयां वकारां वाले विख खान रहे हैं। माया मोह भरम पै भूले, माया दे ते मोह दे भरम विच पै के भुल गए। सतगुरु अपने धियां पुत्रां नाल अपनी स्त्री नाल नेह लगा लिया, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। तू कृपा कर सतगुरु, एक अरदास है, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। सतगुरु जी एक जरिया है, तू कृपा कर वो बन जावे, एक रस्ता लभ जावे। रस्ता केड़ा है? जो गुर दसे वाट मरीदां जो ली है। सतगुरु तेरी साध संगत दा रस्ता लभ जावे, ते साध संगत विच बैठ के असी गुरु गुरु जपदिया अपना उदार कर लिए। एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत, संगत दा रस्ता मिल जावे, ते संगत दे रस्ते थोड़ी नंघ के तेरे दर तक पहुंच जाइए। एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। सतगुरु जी जो साध संगत प्राप्त हो गई, नाम जपन लग गए, जमा दी फाई, जमा दा डर खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। तो कृपा कर, एक अरदास है, एक अरदास पाठ कीरत की। सतगुरु एक अरदास है पाठ कीरत दी। गुर रामदास रखो शरनाई, सतगुरु अपनी शरण विच रख ले। असि भी अरदास करिया करिए, सतगुरु अपनी शरण बख्श, रख हो अपनी शरण प्रभ, मोहे कृपा धारे। सतगुरु सेवा कछु ना जानू नीच मूर्ख हारे, असि मूर्ख हां, सानू कुछ पता नहीं, कुछ नहीं आउंदा, कुछ नहीं सुझदा। तू कृपा कर, अपनी सेवा विच अपने सिमरन विच ला ले। असि भी अरदास करिए, साडा भी पार उतारा, साडा भी उधार हो जाएगा। सतगुरु मेरा आमद करन, इतना समा प्रवान करना, इतनी हाजी प्रवान करनी, दस रहा पासों हुई भुलां दी खिमा। आओ अगला प्रोग्राम कीर्तन दी हाजरी, भाई हरजोत सिंह जी जख्मी, उन्हां पासों सरवण करिए। दस रहा नूं इत्थे बुलाओ, फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: इसान भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी घुआड़का जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब, जो आप जी नूं कीर्तन राही निहाल कर रहे सन। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, जो कि बहुत ही मन नूं ठेस पहुंचाण वाली और बहुत ही दुखदाई मंदभागी घटना होई है, आस्ट्रेलिया विखे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे चार स्वरूप जो अगन भेट हो गए ने। सो आओ आपां सारे पांच मिनट वास्ते वाहेगुरु सिमरन दे नाल जुड़ांगे। कीर्तन दी आरंभता तो पहिलां भाई साहिब जी नूं बेनती है कि पांच मिनट वाहेगुरु सिमरन आपां सारे रल के करांगे। और गुरु प्यारियो, कोई भी रसना वांझी ना रवे, सारे आपो अपनियां हाजरियां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों के जरूर आपो अपनियां हाजरियां।

0: समझले मेरी अर्थी उठी कंधियां ते नहीं चुकया, शायद पड़ोसी ने अपने कंधियां ते मैनू चुकया। इस तरह समझ, तू अपने भी जान, ऐसा ओही जान सकदा है जो वर्तमान दिच आ गया है। तो वर्तमान दिच टिकदियां होवन हार सोई परवाना, जन्म हो गया कबूल, जीवन कोल है कबूल, मरण सानू कबूल। लेकिन मरदे दम तक मनुख नु सिर्फ जन्म कबूल है, मरण कबूल नहीं। इस वास्ते मरदे दम तक जन्म दिन मनांदा है, मरण दिन नु भुलाने दी कोशिश करदा है। और यही कारण है कि परम आनंद दी प्राप्ति तो वांझा रह जांदा है, रोग दिच जीवदा है, सोग दिच जीवदा है। जबकि वर्तमान दिच जीण वाला रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। धर्म दी ए महान साधना सारी दुनिया दी धन गुरु नानक देव जी महाराज करांदे रहे, दसते रहे और लोगां नू रोग ते सोग तो कढदे रहे। इस वास्ते जेड़े जेड़े साधना करके वर्तमान दिच जीवे ते भगवान नू जिंदगी च प्रगट कीता, उन्हां सारियां दी जबान तो एक बोल निकलिया, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा, बाबा वैद रोगियां दा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निरवैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरु प्रसाद हों में रोग मानक को दीना काम रोग मैं गलवस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दिशे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

इतने चिराग, ये रोशनी तो बिना क्यों जी रहे ने? वट नहीं है, तेल नहीं है, धर्म ग्रंथ जो कहंदे ने इना नु मन, एक एक अखर नु खिड़े मथे मन लेना। मन्नेगा मनुख ताई जे कम से कम इतना ओ समझे कि मैथों ए अग्गे। अगर कृष्ण मेरे तो पिछे खड़े ने तो मेनू उना दी कोई गल सुनन दी लोड़ नहीं, उना तो ते मैं ही अग्गे खड़ा। जे गुरु नानक मैथों पिछे ही ने, मेरे अग्गे नहीं ने, तो मैं क्यों उना दी गल मना। मैं देखदा मनुख ने राजनैतिकां नूं भी अग्गे रखिया, उना दी गल भी मन लैंदे ने। मनुख ने परिवार नूं भी अग्गे रखिया होया, पत्नी दी गल भी मन लैंदे ने, और पत्नी पति दी गल मन लैंदी है, भरा दी गल मन लैंदा है। इंज कह लो मनुख ने परिवार अग्गे रखिया होया, राजनैतिक लोगां नूं भी अग्गे रखिया होया। मनुख दी जीवन भर दी चेष्टा ते यही है, हर अवतार नूं अपने पिछे ही खड़ा करो। जिस जिस पासे असी चल रहे हैं उस पासे चलन, जबकि अवतार कह देने जिस पासे असी चल रहे हैं उधर चलो। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। अगर अवतार मनुख दे पिछे चलन लग पे तो फिर अवतार अवतार नहीं है। अगर मनुख मनुख दे पिछे चलन लग पे तो मनुख मनुख नहीं है, तो देवता है, इत फरिश्ता है, इत महान हो गया। लेकिन देखन दे चाया है, पत्नी पति दे पिछे चल सकदा है, पति पत्नी दे पिछे चल सकदी है, भरा भरा दे पिछे चल सकदा है, संसार राजनैतिक दे पिछे चल सकदा है, मनुख अवतार दे पिछे नहीं चल सकदा। जबकि अवतारा दी कोशिश है साड़ी आवाज दी सेध, चले आओ पहुंच जाओगे घर तक। तो साहब कहंदे ने धर्म ग्रंथा नु मन लेना, ते मन के उना नु हिरदे विच धारण करके उना दा पाठ पठन रोजमर्रा करना, ए तेल पाना है दीवे विच। भव वट्टी इत तन लाईए, भावना दी वट प्यार दी बाती ला। जिसनु रोज रोज याद करिए पाठ दे राही बाणी दे राही, आखिर याद एक दिन ते प्यार बनेंगे। याद ही प्यार बन दी है। इस दिते मैं उदाहरण देना हुना, जैसे खादा होया भोजन एक दिन खून बनता है, बार बार कीती हुई याद एक दिन प्यार बन जाती है, प्यार बन जाती है। रोज रोज दा पाठ, रोज रोज दी ये धर्म ग्रंथां दी कमाई, एक दिन प्यार बन जाती है। तो पाठ करना धर्म ग्रंथां दी, इस रचना नु इस बाणी नु मनना ते जप करना, ए तेल पाना है। पढ़ना ते जपन विच थोड़ा जिहा अंतर है। मैं पढ़ना है इस वास्ते मैनू याद होवे, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू इस दे अर्थ बोध आ जान, मैं पढ़ना है इस वास्ते कि मैनू पता चल जाए किस अवतार किस भगत दा ए बोल है, पर मैं जपना है इस वास्ते जपना है कि मैं शब्द दा रूप हो जावां, इस बाणी दा रूप हो जावां। जपन लगया बाणी दा वाक दा कंठ होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि उत्थे जपना उसनू कहंदे ने कि जबान उचारण करे ते फिर मन सुने। पढ़ना उसनू कहंदे ने मैं सामने देख रहा ध्यान बाहर है, पर जपना उसनू कहंदे ने हुण ध्यान अंतर्मुखी है, हुण सुनना आरंभ हो गया है। मैं पढ़ना इस वास्ते है बाणी दी समझ पै जाए, मैं जपना है इस वास्ते कि मैं बाणी दा रूप हो जावां, प्रकाशमयी हो जावां। पोथी पुराण कमाईए, ये सच बूझण आण जलाईए, ए तेल दीवान साहेब ले मिले। जैसे तो भावना दी बाती पाएगा, प्यार दी पाती पाएगा, और धर्म ग्रंथां दे पाठ पठन दा तेल पाएगा, यकीन जानो जिस भी अवतार दी शमा तेरे नाल छो गई तू रोशन हो जाएगा।

करके एक सुरता नहीं, पर एक अक्सुरता रब ने पैदा की थी। वो ना तो महल्या विच पैदा हो सकी, ना वो किसे होर थां ते पैदा हो सकी। वो अक्सुरता रब ने पैदा की थी जेड़ी शमशान घाट दे के छड़ दे थले पैदा हुई। वो अक्सुरता की है कब्रस्थान विच अक्सुरता है। याद रखो, धन किसे कुल वध जां कष्ट, सुभा किसे दा चंगा जां माड़ा, चक्कर चे ना मिलन, पर याद रखियो मौत एक ऐसी रब ने पैदा की जिन्हें समानता पैदा की है। जेड़ा जमया उन्हें दुनिया तो जाड़ा जरूर है, यह समानता है। पर जो भाई सबना शब्द कह मैं ओदी व्याख्या कर लगा, असी ये बचन पढ़ने हैं। मौत ने समानता पैदा की ठीक है, ताकतवर नू चंदन दी लकड़ नाल फूक दिता गया, आम बंदे नू सादियां लकड़ां नाल संस्कार किया गया। पर एक गल चेते रखियो, लकड़ां वख हो सकदियां ने, हजूम इकट्ठ पिछे तुरन वाले किसे पिछे सौ किसे पिछे हजार हो सकता है, पर एक गल सारियां दी बराबर है कि जदो अग लगदी है सड़न तो बाद शरीर सारे सवा इको जे हुंदे। ए नहीं भी चंदन नाल फूके हुए राख नहीं हुंदे सोना बन जांदे ने, ते सादी लकड़ नाल फूके हुए सवा बनदे ने। लकड़ घ्यो जितना मर्जी पा लै, पर अखीर ते जे रह जाएगी ते ढेरी केवल राख दी रह जाए। बराबर तां आ गई। पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी इस तो अगे होर बचन कीता, कहन लगे इशनान एक पानी नाल हो सकदा है, शमशान भूमि एक हो सकती है, अग एक हो सकती है, मौत शब्द सब लई एक हो सकता है, पर मरण तो बाद फिर एकता नहीं, क्योंकि रंग रतड़े साईं दे घर नूं चले जांदे ने, ते रब तो विछुने हुए जेड़े ने जन्म ते मरण भी चले जांदे। अक्सुरता फिर भी ना कोई बाणी चे शब्द तुहानूं सब नूं चेते वे। मैं सिर्फ उन्हां को प्रमाण अर्ज कर देना, ऐसो ए संसार पेखना रहन ना को पई खैरे, सब ने जाना। ऐसो ए संसार पेखना रहन ना को पई खैरे, सूदे सूदे रेग चलो तुम नतर को तक्का दवाई खैरे, बारे बूढ़े तरुणे भैया सबको जम लै जई है रे। भावे असी अज शब्द वरतने हैं, पता नहीं गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह हर एक नू सोझी बख्श अपने ज्ञान दी। किसे दी मौत होवे सी कहने अजे समा नहीं सी, सोची दा मना आपा रब तो सियाने आ, जे समा ना हुंदा ते दुनिया तो कूच क्यों करदा। समा सी ते तां गया है, ते गुरु साहिब ने कहा बारे बूढ़े तरुणे भैया सबको जम लै जई कह रे, मानस बपरा मूसा कीनो मीच बलैया खई कह रे, तनवंता अर निर्धन मन ई तांकी कछू ना कानी रे। एक चीज ने बराबरता पैदा की थी, राजा परजा सम करमा रे, आवे बराबरता। मौत ने बराबरता ल्यांदी, राजा परजा सम कर मारे ऐसो काल बिडानी रे। पर इथे भी बराबरता खिंडदी दिसी, क्यों? हर के सेवक जो हर पाए, कैसे कमाल दी बरीकी लतीफ गल्ला रखियां विच बरीक। कहिंदे ने रब दे प्यारे ते ना लागू करी के सम कर मारे नहीं, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे। उन्हां दी कहानी दुनिया तो जान तो वखरी, जान दी वखरी गए, आवे ना जाहे ना कबू मरते पार ब्रह्म संघारी दे। उन्हां दी कथा निराली है, ना आउंदे ने ना जांदे ने ना जमदे ने ते ना मरदे ने। ए जदों कथा निराली क्या ना, उस वेले मन ने क्या मना सी ता अखरी अर्थी कर सकांगे ना। कथा निराली, पर ए ता साई जाने जेड़ा अपने करो निवाजिया कोया नू भेजदा है। सच जाने हो, पूरे दी कथा अधूरा कदी भी नहीं कर सकता। तिनकी कथा निरारी रे, सुखमनी साहब आप जी पढ़ते हो, ते मंत साहब उन्हां दा जीवन जो बाबा अजीत सिंह उन्हां ने लिखे, उन्हां दे दर्शन दिदारे खोए, पर उन्हां दा जीवन आपने सब ने नेड़े खो के देखे। वैसे तो महापुरख दे जीवन दी गल करने नू खुशामद ना समझियो। गुरमुखो एक बेनती मेरी सरवण करियो,

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

प्रथमते ओ सिद्ध पुरुष जो इस अस्थूल देही देच किधरे भी होन कि किसे सत्संग नो मन भावदा ओ देख लेन दूर हो ते शरीर नाल पहुंचना बड़ा औखा हो सूक्ष्म शरीर कर लेंदे ने पहुंच जा प्रथम। दूसरा जिन्हां दी मौत हो गई शरीर दी मौत हो गई इहदी मौत एडे डेरी हो जांदा मिट्टी हो जांदा है सूक्ष्म शरीर ना जलाया जांदा है ना डेरी होंदा। आम हालात विच शरीर दी मृत्यु तो बाद सूक्ष्म शरीर 13 दिन दे अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जांदा है। हर वक्त मौत हो रही है हर वक्त गर्भ विच प्रवेश करन दी सहूलियत संसार विच मौजूद है। 13 दिन दे अंदर अंदर इस सूक्ष्म देही किधरे ना किधरे प्रवेश कर जांदी है। जो आम साधारण लोग ने साधारण किसनों कहोगे सच भी बोलते रहे झूठ भी बोलते रहे पुन भी करते रहे पाप भी करते रहे सत्संग भी करते रहे कुसंगत भी करते रहे चल के गुरबाणी की कथा भी सुनिए गुरबाणी का पाठ भी करिए गंदे गीत भी अलापीए एक कदम अगे चलते रहे एक कदम पिछे चलते रहे ना अगे गए ना पिछे गए उत्थे दे उत्थे इन्हां नूं साधारण कहिंदे ने। ये 13 दिन दे अंदर किधरे ना किधरे गर्भ विच प्रवेश कर जांदे जिहड़े असाधारण साधारण नहीं ने असाधारण। असाधारण कौन बड़ा भजन कीता है बड़ा नाम जपे बड़ी सेवा कीती है बड़ी बंदगी कीती है लेकिन मोक्ष गति तक नहीं पहुंच सके दर तक नहीं पहुंच सके घर तक नहीं पहुंच सके रस्ते च ही रह गए। दर दी समझ नहीं सी समझ सी घर दी समझ नहीं सी समझ सी फिर क्यों नहीं पहुंचे वाट लंबी है पेंडा बिखड़ा है। तुसी आखोगे ओ रस्ता केड़ा है ओ पेंडा केड़ा है हुण मैं अर्ज करा ओ चलन दे नाल ही रस्ता बनदा उंज कोई नहीं उंज कोई नहीं। दो पंक्तियां मैं थानू सरवण करावा गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा गुरमुख खोज अलक है ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा मच्छी जैसे पानी विच चलदी है ओदे चलन नाल रस्ता बनदा है उंज कोई रस्ता नहीं कोई रस्ता चलती है फिर रस्ता बनता उंज नहीं है। पंछी आकाश दे जद उड़दा है उड़दे ही मार्ग बनता है उंज कोई मार्ग नहीं है। गुरमुख अभ्यासी जैसे वाहिगुरु जपदा है जपन नाल रस्ता बनता है उंज कोई रस्ता नहीं है कोई रस्ता जपदे ही रस्ता बने है। गुरमुख खोज अगम है ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा मच्छी चल पई रस्ता बनदा गया। इन्हें जप आरंभ कर दिता है अमृत वेले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु कि जपना व्यर्थ नहीं जाएगा एक तिल नहीं बनेगा ले व्यर्थ नहीं जाएगी रस्ता बनेगा। ये गल वखरी है कि जीवन रस्ते च ही रह जाए या घर पहुंचे जिड़े चलते पै पर रस्ते च ही रह गए घर तक ना पहुंचे इन्हां नूं असाधारण कहिंदे ने। ये साधारण लोग नहीं ने असाधारण ने। ये सूक्ष्म देही बहुत जल्द जन्म नहीं लैंदी ये सूक्ष्म शरीर बहुत छेती गर्भ विच प्रवेश नहीं करदा क्यों जितनी वाट इसने तय कीती है चल चल के इतने ही संस्कारां वाली कोई मां होवे तां गर्भ विच प्रवेश करनगे वरना नहीं। इस तरह दी कोई मां होवे जिहड़े उनां कोल संस्कार ने चल चल के जो उनां नूं अनुभव मिले है। दूसरे असाधारण कौन जैसे 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर औरंगजेब।

हर रच दीनी। कहम फूल राजा होए बैठा, कहम सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघर। दुष्ट जीते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण कहता।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुझ जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

चौपाई संबत सत्रह सहस पनेज अर्ध सहस फुन तीन कहेज भाद्रव सुधि अष्टमी रववारा तीर सत द्रव ग्रंथ।

बहुर रच दीनी। कहं फूल राजा होया बैठा, कहं सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघर। दुष्ट जीते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण कहता।

चौपाई संबत सत्रह सहस पनेज अर्ध सहस फुन तीन कहेज भाद्रव सुधि अष्टमी रववार तीर सतद्रव ग्रंथ।

ताहें सब कल दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहिन हरिहो, ताके ताप तनक मह हरिहो।

बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा होए बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघर। दोष जीते

ताहे सब काल दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहिन हरिहो, ताके ताप तनक मह हरिहो।

0: छुट्टे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड।

कार सतिया मान संतो कुबजै देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा शुभ करे संसार चोरा जारा तै कूड़ियारा खरा बवेकार एक हुदा खाए चले थाओ तना पेकाई कार जल थल जिया पुरिया लोआ कर आया कार जे आखे सो तू है जाने तना पे तेरी सार नानक भगता भुख सलाण सचनाम आधार सदा आनंद रह।

बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एवं विचार है जिन

नील वस्त्र पहरोवे प्रमाण मिलिश तान ले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देख चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे हुआ।

गुरु के लंगर विच हथी सेवा करके लाहे प्राप्त करिया करिए जी। घर विच जां गुरु घर विखे श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप श्री सहज पाठ श्री अखंड पाठ साहिब दी सेवा

0: दयाकरणं दुखहरणं उच्चरणं नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त न माया।
1: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मान योग सत संगी जनो, जितनिया भी सब संगता, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद दे विच सज करके अमृत वेले सेवा दा आनंद माण रहे हो। सतगुरां दे तख्त साहिबाना दे उपर प्रकाश होए हन, उपरंत पंज पावन बाणिया जी दे नितनेम, श्री आसा जी दे वार दे कीर्तन, छे पौड़ियां आनंद साहिब जी दे पाठ दी अरदास ते पावन मुख वाक आप जी ने महापुरखां दी रसना तों सरवण कीता है। आओ संगत जी, मन दी एकाग्रता बनाईए, कुछ पल कुछ समा आए हुए पावन मुख वाक दी व्याख्या सतगुरु पातशाह महाराज जितनी क बुद्धि बख्श दे हन, तुश बुद्धि द्वारा आपां सरवण करदे हां। सत संगत दे विच कुछ पल कुछ समा बैठण दा सुभाग सानू सारिआं नूं ही प्राप्त होया है। भगत जी कहिंदे, कबीर एक घरी आदि हूं ते आद, भावें अपनी 24 मिंटां दी घड़ी दे विच्चों 12 कु मिंट ते 12 कु मिंट दी अद्धी घड़ी दा हिस्सा 6 कु मिंट, इन्ना समां भी एकाग्रता दे द्वारा सतसंगत दे विच बैठ के कोई गोष्ट कोई विचार नाम बाणी दे रसियां दे द्वारा कोई सरवण कर सकीए ते ताते साडी मोक्ष साडी कल्याण संभव है। धन सतगुरु जी कहिंदे, वड्डे भागां दीआं निशानियां हुंदीआं हन जिहड़े पुरख सत संगत दे विच आ के बैठदे हन। सत संगत नूं सब तों ही उत्तम मन्निआ जांदा है। सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी अज दे पावन मुख वाक जैत सरी दी वार ते सतगुरु जी उस दी पौड़ी दे विच सानू उपदेश बख्शिश कर रहे हन। महाराज जी ने जैत सरी दी वार दे विच सलोक ते पौड़ियां ही उचारण कीतियां हन ते सतगुरु जी दी मौज है कई वारां दे विच सलोक महल्ले ते पौड़ियां भी आउंदियां हन। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 22 वारां महाराज जी ने दर्ज कीतियां हन। 22 वारां दे विचों महाराज जी दी एक वार है जैत श्री दी वार, जिस दे विच सतगुरु महाराज जी अज दे इस पावन पौड़ी दे विच सानू महाराज जी उपदेश बख्शिश करदे हन। धन सतगुरु महाराज जी कहिंदे, ओह सुलखणे भाग हुंदे हन जिहड़े भाई अपने रसना तों परमात्मा दा कीर्तन उचारण करदे हन, क्योंकि महाराज गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी इही उपदेश दिंदे हन कि भाई दो समय कीर्तन अपनी रसना तों उचारण करना। कीर्तन दा अखरी अर्थ हुंदा है कीर्ती, ते कीर्ती दा अखरी अर्थ हुंदा है वडियाई सोभा प्रशंसा। अपने परमात्मा दी ओ वडियाई ओ प्रशंसा जो राग दे विच कीती जावे, जो रबाब दियां सतरां दे द्वारा धुनां दे द्वारा कीती जावे, उस नूं कीर्तन आख्या जांदा है। ते कीर्तन नूं कल्ला असी किरत नहीं बनाना, ओ परमात्मा दी कीर्ती करनी है, ओ परमात्मा दी वडियाई करनी है, ओदी सोभा करनी है। धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी ने भाई मरदाने जी दे पासों रबाब मंगवा के ते महाराज जी ने कीर्तन नूं पैल दित्ती। हजूर जी ने इसे प्रकार बचन कहे, कलयुग में कीर्तन प्रधाना। भाई जे किसी ने प्रधानगी कीती ते ओह कीर्तन ने कीती है। ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਿਆਸੂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਰਾਗ

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भगति दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै करदे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर उच्चार

0: पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आद गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन हो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन हो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिवें तंदूर दे विच लकड़ा बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होयां थक जावां, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खदियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी कोई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हां, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थो तक कि जमीन दे विच पैदा हुई फसल, जमीन दे विच पैदा हुए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा हुए रुख परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा है वह सरोवर विच है, ते किरण सूरज जिहड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकना ती शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा दिंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना तां चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उहनूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने यह पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच उह पैदा होए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नूं देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उहने ये नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नूं अपने जिस्म नूं घुमाना है, उहदा सुभाग है चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उहने सवेर तक लहिंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उहनूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल तां केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिट ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टेक हो के चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जेड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की, एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नू देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खेड़ मूह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जेड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा भादों दा उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह भी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। ओदे विच वी एक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी एक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी एक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, के पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नू विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जानो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। एक ऐसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदे बहुत सोहनी पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले, मोर बाबी ये बोल दे वेख बदल काले, नार पतार प्यार है मां पुत संभाले, पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है, पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले, के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभन वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना, गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगतां सानूं दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है, उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने, रहाओ दे बचन ने, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, हे मेरे मना की परमात्मा नूं प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा, की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नूं प्रेम करन तो बिना, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारियां थावां ते रविया है, ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नूं फिर समझिए, मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नूं कदी तू खुश नहीं कर सकदा, गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नूं समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असीं वरतने आ, जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओ तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किते मिट्टी दा ढेर हो जा, ओ तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्याक है, मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं, ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं, सच जाणियो ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है, ओ मुर्दा है, जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, ये सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कईयां नानका जे प्रीत नहीं, भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार, मृतक कईयां नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है, उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं, ओ मुर्दे नूं जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है, कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना, बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने, उन्होंने जोबन दी गल कीती, हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है, ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं, ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है, प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए, उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरा जे सह प्रीत ना जाए, किन्ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं, डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए, सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है, पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा, ऐ मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करे परमात्मा दी बंदगी करे, जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की, कहन लगे फिर एवें असमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना बंदगी करके ही जिंदगी है, जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा, जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लीए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए, फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उना नू जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन, ते हकीकत एवे असी कहां के मिट्टी मिठी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिठी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिठी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर
1: सतनाम करता पुरख निरभो निरवैर कालम व्रत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। गुरु रूप सत्संग जीओ पते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। मनुख एक ऐसा जन्म है सहजे सहजे मनुख कई तरह की होर जिंदगी नो जन्म देंदा है, मनुख दे अंदरों ही समाज दा जन्म होया, मनुख दे अंदरों ही राजनीति दा जन्म होया, मनुख दे अंदरों ही धर्म दा जन्म होया। समाजिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, राजनैतिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, और धार्मिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने। मनुख दा जन्म होया फिर मनुख ने समाज नो जन्म देता है, मनुख ने राजनीति नो जन्म देता है, मनुख ने धर्म नो जन्म देता है। राजनीति ते समाज नो इस वक्त ना ली क्योंकि आपां धार्मिक मंदिर दे बैठे हैं, ते महान धर्म दे सागर धर्म दे केंद्र धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म दी करा रहे, जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च इक कद नहीं, हजारां च सैकड़ां च इक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछान, कोटन में नानक को नारायण जय चित। गुरु तेग बहादुर करोड़ां च कोई एक कद नारायण जिस दे चेते दे चे, नारायण जिदी समझ दे चे। गुरुद्वारे बैठा है गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है, ना गुरु दी अजमत दा पता, ना गुरु दी महानता दा पता, ना गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलदा और हर वक्त बोलदा, जो मेरी समझ दे च नहीं होवेगा परमात्मा है परमात्मा, जर्रे जर्रे च है, रोम रोमे च है, होवे पिया, जो मेरी समझ दे च नहीं है। दूसरा जो मेरे चेते विच नहीं है, जो मेरी सिमरती विच नहीं है, होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है, होवेगा रोम रोम विच परमात्मा, मेरी सिमरती विच नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरशा ने आख्या याद करो, चेते करो, संस्कृत च कहिंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते है मैं दोहरावा शब्दां नूं, असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते, भुल गए। भुलिया क्यों? समझ दे च नहीं। कहिंदे ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहने दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है। समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु की जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन की समझ नहीं, इनू परिवार की समझ नहीं। मनुख की जिंदगी दसदी, इनू निरंकार की समझ नहीं है, नहीं है। इहदा व्यवहार दसदा है, इहदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इहदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा की समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने जन्म ते हो गए, ते हुण मैं यह भी अर्ज करा, जन्म बच्चे की तरह आउंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह के महान रूहां का जन्म भी होया, जिन्हां नूं असीं कह सकते हैं बुढ़ियां दी तरह जन्म होया। चीन दे च कहिंदे ने लाओत से जिहड़ा संत होया, कहिंदे ने बुढ़ियां दी तरह पैदा होया। ते बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी, जन्म तो सूझवान सी, जन्म तो दूरदृष्ट सी। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ते जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण। ये गुरु अर्जन देव जी तुसी ते जमदे ही ब्रह्म गयाने। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, थोड़े शरीर का जन्म होया, शरीर के नाल नाल धर्म का जन्म होया। ते जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण। कहने ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन। गुरु अमरदास जी महाराज का सिंघासन गोविंदवाल साहब की गल है, चढ़न की कोशिश पे करते, उपर तखत से चढ़न की कोशिश पे करते। भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ये गुरु नानक का तखत है, ये तीजे गुरु नानक का सिंघासन है, इसते बैठने की कोशिश ना करो, इसते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे आया बच्चे नूं कह रहे, बालक गुरु अर्जन देव जी इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न की कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक का सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिदा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लैके बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता। आखिया बहुता बाणी का बहुता, इत बाणी का जहाज है, जे ये नहीं सिंघासन से बैठेगा तो होर कौन बैठेगा? इतने धुर दरगाहों बैठे आया, इनू तो रब ने बिठाया, इनू तो परमात्मा ने बिठाया, इत प्रभु की गोद विच है, और इस दे आसरे से पता नहीं कितनियां नू परमात्मा की गोद हासिल होगी। इत बहुत है, इत जहाज है, ये आसरे पता नहीं कितने पार हो गए, ये नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ा च एक अद कदी कदी जन्म सारिया के बच्चे की तरह, शरीरक तौर पर भी बच्चे, दिमागी तौर पर भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाई संसार के इतिहास कोई बुढ़िया की तरह पैदा होता है। चीन देच एक कथा है, बई लाभ से बुढ़िया की तरह पैदा होया, भाव जन्म तो गया नहीं। ਕਬੀਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਸਨ, ਡੁੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਸੀ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਿਰ ਤੈਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹੁ ਕਮਲ ਜੈਸੇ ਨੇ, ਕਮਲ ਡੁੱਬਦਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਦੇ ਖਾਂ ਤੈ ਡੁੱਬੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਡੁੱਬੇ ਪਏ। ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਵੀ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਵੀ ਤੈਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ, ਹਾਥੀ ਨਹਾਵੇ ਪਿਆ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਥੀ ਤੈਰ ਰਹੇ, ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਤੈਰ ਰਹੇ, ਹਾਥੀ ਤੈਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦਾ। ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿਰ ਹੈ? ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਗਊਆਂ ਤੇ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ। ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਤੈਰਦੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਸਨਾਤਨ ਮੱਧ ਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਅਗਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਣ ਮਣ ਦੋ ਦੋ ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਲਾਸ਼ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਰਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਤੈਰਦੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਜੀਵ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਬੈਠਦਾ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਦਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਹਮ ਦੇ ਖਾਂ ਤੈ ਡੁੱਬੇ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਡੁੱਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹਿਤ ਬੈ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮ ਦੇ ਖਾਂ ਤੈ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੁੱਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। पानी वधदा है, कमल होर ऊपर उठदा है। धन घर दे च वध रहा है, डुबदा नहीं पिया। प्रभता वध रही है, डुबदा नहीं पिया। नहीं कि कोई प्रभता च डुबे हुए ने, कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने, कोई रूप रंग दे डुबे हुए। हम दे खांते हैं डुबे। महाराज कहिंदे मैं देखदा दुनिया ते डुबी पई। धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा ते खड़ा है। सूरज अपना नूर वंडदा है संसार दे किरणा दे रहा। परमात्मा दा प्रकाश हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे रहा। गुणा तो पता चलदा है, इत्थे चानना है। सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा दे ने। सब गुण तेरे मैं नाही को, विण गुण कीते भगत न हो। मेरे घर दे चानना है, पर चानना ते सूरज दा है मेरा ते। अगर हृदय दे गुण आ जान, गुण परमात्मा दे, ठीक है। गुण रोशनी ने, औगुण अंधेरा है। जितने अवगुण होणगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होवेगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होणगे उतने ही उदी जिंदगी दे चानना होवेगा, प्रकाश होवेगा। और जीवन सही मार्ग पे चल रहा होगा। तो मैं फिर दोहरावा, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया। तो चलदी की है, सुरत चलदी है। तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गए, पैर चल के आ गए ने। इहदे नाल हाजरी असी भरी है। असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जाती है। शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हाथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन, गुरु की हाजरी पे भर देन, एक दो बंदे आउणगे जिन्हां नूं गुरु की हजूरी नसीब होगी। कलगीधर पिता दे रसना तो यह बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। शायद जिन्होंने साखी सुने, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उठे नहीं सी, ध्यान उठे नहीं सी, सुरत शब्द विच नहीं सी। हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्होंने ध्यान उठे सी। गैर हाजर हाजर चलना ते सुरत ने ना। सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं यह भी तरह दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ में आवे। सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। स्रोत ही शब्द तो बने हैं सुरत। भई ये स्रोत है, ये सुरत दे च है, सुन रहे हैं। एक सैकंड दे तीन घटनावां घटदियां ने एक ही समय। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये स्रोता है, सुरत दे च है। अगर ये सुरत दे च है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये तीन घटनावां एक सैकंड दे घट दें। जिस वक्त मनुख सुनदा है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना एक सैकंड दे घटती, एक सैकंड दे घटती। इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुनिया, इधर मन नूं समझ आ गई। इधर मन नूं समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थे। ऐ ज्योत दे ज्योत हो गई, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी इक छिन विच है, निर्माण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूट है। निमक निमक एक सैकड़ है। एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। एक जन्म एक नेमत इनू अतकथनी ना समझ लेना। किसे कमरे विच 50 साल का अंधेरा हो, गुप अंधेरा हो, उस अंधेरे नू कढ़न वास्ते 50 साल लगणगे? नहीं, एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई देगा। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगणगे? नहीं, एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर ना, ते एक दम ही आज है। बाबा फरीद कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद टाकम गूंजणिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीवां, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी? मैं भोजन हुण छकां, हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है? मैं नाम हुण जपां, फल अगले जन्म विच मिलेगा? साल दो साल बाद मिलेगा? इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। ये भी मैं अर्ज करां, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज का तत छिन। टुक दम करारी जो करो, एक दम विच किधरे टिक जाओ हाजर हजूर खुदा। मैं पानी हुण पीवां ते प्यास महीने बाद मिटेगी? मैं रोटी हुण खावां ते भुख कल मिटेगी? लोकी कहिंदे ने कोई नहीं, सहजे सहजे हो जाएगा, गासी लग जांदी हौले हौले। बंदे नूं ताप चढ़े आवे बड़ा जोर दा, ते वो डॉक्टर नूं कहिंदा जरा हौले हौले बुखार मेरा उतारी, महीना दो महीना तड़पदा रहा। कहिंदा छेती कर, जल्दी ठीक कर। विकारां दा अज्ञानता दा ताप मन नूं चढ़े आवे, हौले हौले हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये ठीक नहीं होना चाहता। ये रोगी रोग नाल भी मोह कर बैठा है। मनोचिंतक ऐसा कहने, लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होकर जीवन देन और निराश हो जाते हैं भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने, ऐ दवाई ले लो, ऐ दवाई ले लो, उन्हां दे अंदर निराशा है। रोग दे जीण दी आदत बन गई, विकारां दे जीण दा सुभाव बन गया। हुण ठीक होण दा ख्याल भी नहीं, और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पैदा। नहीं ठीक हो सकांगे, इहदे जीवणा पैदा। जैसे जर्मनी दे प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे, फ्रायड ने कहा है, हंकार दे काम दे क्रोध दे लोभ दे जीना पै गया, इहदा कोई इलाज नहीं। थोड़ा जिहा इहनां नूं मदन कीता जा सकदा है, बाकी इहनां दा त्याग नहीं हो सकदा। ये जीवन नूं छड्ड नहीं सकदे, इहनां दे जीवणा ही पै। यूरप दे पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्रायड ने बड़ा निराश कीता है। जीवणा ही पै, इहदे जीवणा पै। उहने ऐलानियां किया, भारत दे संत गलत कहिंदे ने, मन विच राम है। कहिंदा नहीं, मन विच काम है। मन विच निरंकार है, कहिंदा कतई नहीं, मन विच हंकार है। पंज कहिंदा, कहिंदा मैं मन नूं भुल के देखिया, सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं है। मैं मन नूं भुल के देखिया, सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं है। मैं मन नूं भुल के देखिया, कहिंदा सिवाय काम तो होर कुछ नहीं। एवें कही जांदे राम है मन तूं जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। एक सीमा तक वो ठीक कहिंदा है, एक सीमा तक। जैसे सागर दे उपर उपर ते लहरां ने, या कुछ लभण गया मछलियां ने, संख ने, सिपियां ने, मोती ते गहरे कर दे किसे किसे दे हाथां। उपर उपर ते वाकई मन दे ख्वाहिशां ने, कामनावां ने, वासनावां ने, जो बहुत गहरे डुबकी ला लैंदे ने, उन्हां नूं राम नाम दा हीरा मिल जांदा है। तन में मनवा मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन विच मन है, मन विच सच। तन विच मन है, मन विच प्रभु है, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। खेड सारी पहचान दी है, पहचान दी है। जिसनों मैं नहीं जानता वो नहीं है, जिसनों मैं नहीं समझता वो नहीं है, जो मेरे चेते च नहीं वो नहीं है, जो मेरी स्मृति च नहीं वो नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदन, हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते, पर उस बच्चे की तरह जिसने अज चलना सीखे, दो साल बाद, ढाई साल बाद, डेढ़ साल बाद बच्चे चल रहे हैं, पैर पुट रहे, खड़े हो रहे। कि चार पांच साल का बच्चा होवे ते बच्चा चले ना, मां बाप नूं चिंता हो जाती है, गल की है, बच्चा खड़ा नहीं होता, पैर नहीं पुटता, चार साल का हो गया, पांच साल का हो गया, डॉक्टरों को ले जाने, वैद्य को ले जाने, तीन साल का हो गया, चार साल का हो गया, मुंह अक्खर नहीं निकल, बोलता नहीं, मां बाप नूं चिंता हो जाती है। जिस दिन बच्चे की जबान चो पहला बोल निकलता है, अक्सर मां ही निकलता है, घर दे खुशियां मनाईया जाए, घर दे प्रसाद वंडते हैं, मिठाइया वंडते हैं, नचते ने, टपते ने, बच्चा बोलन लग पे। जिस दिन बच्चा कदम पुटे, बच्चे ने कदम पुटे, चलन लग पे, चलो एक कदम ही सही, कदम तो पुटे, खड़ा तो होया, कोई ती चाली साल तो गुरुद्वारे आ रहे होवे ते अजे भी सुरत नहीं चली शब्द की तरफ, यकीन जानो गुरु नूं भी चिंता हो जाती है, गल की है, इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे, पंजा साल हो गए गुरुद्वारे आउंदे, अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपदे, गुरु नूं भी चिंता हो जाती है, बोलना ही नहीं आया, बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रव रही, इन्हू बोलना ही नहीं आया, ये बोलता ही नहीं, पचास साल का हो गया बोलता नहीं पे, ये तीह पैंती साल हो गए ने इन्हू चलता ही नहीं, चलना तो सुरत ने, जपना ते रसना ने, रसना नाम जपो तब मतिए, इन बिद अमृत पाओ, जपना रसना ना लो, और जपन दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है, गाविए सुनिए मन रखिए, जबान गायन करे ते मन सुने, मन स्रोता बने जबान वक्ता बने, अगर जबान वक्ता बन के मन स्रोता बन गया ये पुरुष पहुंच गया, जबान वक्ता ते बनी मन स्रोता नहीं बने, ये चलते पे पहुंचे कोई, जबान वक्ता ही नहीं बने, जपदा ही नहीं, ये तो उस बच्चे की तरह होया, चार पांच साल का हो गया, मुंह बोल नहीं निकलते पे, मां बाप नूं चिंता है, गल की है बोलता नहीं, डिगना की है ते चलना की है, सत्संग विच आया चल पे है, कुसंगत विच बैठा है डिग गया, सच बोले है चल पे है, झूठ बोल रहे हैं डिग पे है, दान कीता है चल पे है, बेईमानी कर रहे हैं डिग पे है, अमृत दी प्यास पैदा हुई है चल पे है, शराब दी तलब जाग पई है डिग पे, जिंदगी भर ये चलना डिगना चलना डिगना यही आंदा है, हाथ देच गुटका है चल पे है, पर गंदे गीत अलाप रहे है डिग पे है, तुसी देख सकते हो चल देने डिग देने चल दे सारी जिंदगी, चल पैने डिग पैने, कदम अगे तरफ उड़दे डिगदे पिछे दी तरफ, फिर उत्थे ही आ जांदे ने जिथो चले, हुण सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे एक कदम पिछे पुटे किथे पहुंचेगा, किधरे पहुंचेगा, चल चल के थकेगा, चल चल के टूटेगा, पहुंचेगा किधरे नहीं, दावे नाल मैं कह सकदा चाली चाली साल तो जड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, चाली साल पहले क्रोधी सन अज भी क्रोधी ने, चालीस साल पहले लोभी सन अज भी लोभी ने, चालीस साल पहले झूठे सन अज भी झूठे ने, और चालीस साल पहले वासना दे भरे हुए सन अज भी ने, कल ते कुछ भी ना बने, मेहनत ते बड़ी की थी, थके भी ने टूटे भी ने। 40 साल पहले हंकारी सन, अज भी हंकारी, खेड़ते कुछ भी ना, चले ने चल चल के थके ने टूटे ने, पहुंचे किधरे भी किधरे भी। हे प्रभु, मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेर कर तू मेरी बां पकड़ खेड़ बने। दास गोविंद फतेह सतगुर की बाहां दे मोहे निस्तार। गुरु गोविंद सिंह जी, हे प्रभु अपनी बाहां दे, अपनी बाह पकड़ा ते डिगण तो बची। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन। मनुख कोल जिहड़े कन ने, ये पुत्र नूं सुन सकदे ने, मित्र नूं सुन सकदे ने, पत्नी नूं सुन सकदे ने, पति नूं सुन सकदे ने, भरा नूं सुन सकदे ने, मित्रां नूं सुन सकदे ने, गुरु नूं नहीं सुनदे। ये हकीकत है महाराज। मेरे कोल ओ कन नहीं, सतगुर कहंदे जो तैनूं सुन सका। मेरे कोलो जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका। मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचते हैं, परिवार तक पहुंचते हैं, मित्रां तक पहुंच जाते हैं, पड़ोसियों तक पहुंच जाते हैं, हे प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच। मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचा। पहुंच दिए गल रब तक, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। जा का कहा दरगे चले, महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चल रहा है, परमात्मा सुन रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवें नहीं बोलना, दे कन सुनो अरदास जीओ। मैं तेरे कन दे गल करनी है, थोड़ी करनी तो सुन ते मैं बोल। भगत बोलते ने प्रभु सुनदा, क्यों उन्हां दे बोल प्रभु तक पहुंचते हैं। दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है, जबान तो निकली हुई गल तो सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। मेरे कोल ओ अखां भी कोई नहीं जो तैनूं वेख सकदी है। जो परमात्मा नूं वेखदियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने, इतनियां पवित्र हो जांदियां ने, इतनियां सुंदर हो जांदियां ने, ओही नेत्र खूबसूरत ने जिन्हां च परमात्मा वसदा है। ओ नेत्र ते करूप ने, मैले ने, जिन्हां दे अंदर वासना है, जिन्हां दे अंदर अनर्थ है। साहब कहने वो सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन। गुरु ग्रंथ साहब दे पहले टीकाकार भाई गुरदास ने आपकी ग्यात लिए अर्ज करा, मेरे देखे मेरी स्टडी दे जो आया गालबन 150 शब्दों के अर्थ भाई गुरदास जी ने आप कीते ने। जिहड़े जिहड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी ज्ञानी भुलेखा खा सकते सन, लोकी धोखा खा सकते सन, भाई गुरदास जी ने उन्होंने खोले। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मन, इस श्लोक नूं भी खोलदे ने। पवन गुरु गुरु शब्द है, वाहेगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता मैत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलते हैं पवन करके बोलते हैं, देही माटी बोले पवन। पवन ना होए बोल नहीं सकते। देखो लाश पई होंदी पानी के शरीर च है, मिट्टी का ढांचा भी पिया, पवन नहीं रह गई तो बोलना कोई नहीं, बोलना ही बोलना। ते पवन करके देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए। बोल के ही संबंध जुड़ते ने, बोल के ही संबंध टुटते ने। कुछ ऐसा बोले है, बोल होंदा है कि ओपरा बेगाना अपना हो जाता है। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलते हैं मुद्दतां दी मित्रता दुश्मनी च बदल जाती है। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा बंदे नूं तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पदा रहे। पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड़ते सारी बोलां दी मनुखी दुनिया दी सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है, ये भी मैं अर्ज कर दें। सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने। मनुख कह देंदा उथे

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: तुहाडा घर तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
4: इसनु खरीदन जा वेचन लई तुहानु चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लई काम करे जिस ते तुसी भरोसा कर सको जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद जो अपने 35 सालां तो वद्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
3: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
4: सो हर तरह दी रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल फॉर्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह ले अज ही गुरदयाल सिंह बाद नू
3: 604-351-5111 ते कॉल करो 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।

0: द्वार रटुत इंगुरिया। तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया, एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया, एक बचन पर समय अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला, ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़, क्यों मैं चल नहीं सकदा, क्यों नहीं चल सकदे। हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे है, और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी करने का कर सकता। एक कदम चलेगा, दो कदम चलेगा, तीसरे तो डिगेगा, लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है, जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है, बच्चे नु चलना आ गया है, प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने। खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है, चलो एक कदम ही सही चलिया ते है। एक कदम चल चलना, एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है, बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल, सत गुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही, वाट लखां को दी है, चिंता न कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई, चलन दी जांच आ गई, ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना, मां नू चिंता हो जाती है, पिता नू पीड़ा हो जाती है। ले जांदे डॉक्टर कोलों, हो गया तीन साल दा, हो गया चार साल दा, पैर नहीं पुटदा। तीन चार वरियां दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहिंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलता है, मम्मा अखर पहले निकलता है, मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर दिच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया, मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा जे बच्चा रह गया है, बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है, वाहेगुरु कहना नहीं आया। जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका ना ते निकल आया, एदी जबान चो पावे मां ने नहीं आखिया मैं मां तेरी, लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कढ़वांदी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे, पर्शियन होवे, अरबियन होवे, चाहे कोई हिंदी बोलता है, सिंधी बोलता है, पंजाबी बोलता है, दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है, मां मां मां। और जे जिंदगी दा अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत ते आया सफल हो गया, मां ते निकलिया। और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां। ये बच्चा बच्चा रह गया, अगे नहीं जा सकया। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਪੈਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਪੈਰ, ਇਹ ਕਲੱਬ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਣ। ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਪਤੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਕਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜਿਆ, ਕਦੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਾਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੋ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੋ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਮਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਪਤੀ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੈਸਾ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗੰਮੇ ਬੋਲ, ਸਭੇ ਸਾਖ ਕੁੜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਦੇ ਲਾ ਗਈ। ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੱਥ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਾਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ, ਇਹ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੁਜ ਬਲ ਵੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ, ਸਰਵਨ ਸੁਰਤ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟੁਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ, ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਲੋਭ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੈ, ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮਮਤਾ। ਮਮਤਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਅਧਪਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਖ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੋਂ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੋਂ ਦਇਆ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਵੀ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੱਕਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਕਣੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁਜ ਬਲ ਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਤ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲਿਓ ਅੰਗੁਰੀਆ ਸਰਵਨਾ ਸੁਰਤ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟੁੱਤ ਪਿੰਗੋਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦ ਪੁਰਸ਼। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨ, ਪਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਭ ਤੇਰਾ ਨਾਦ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀਤ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਕਦ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਸਨੀਕ ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਦੇ ਬੋਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੰਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ, ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਾਸੀਅਤ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਈਏ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੱਥਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸ ਦੇਵੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਠ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। तो हसन मुस्कराया कहिंदा मित्रों मैं थोड़े विच ते दीवार विच कोई फर्क नहीं समझदा थानू सुना दिता दीवार नू सुना दिता एक कोई गल है कोई फर्क नहीं है मेरे कहने नाल दीवार नहीं बदलती मेरे कहने नाल तुसी भी नहीं बदलते मैं बोलदा दीवार नहीं सुनदी मैं बोलदा तुसी भी किथे सुनदे ओही कुछ सुनिया जांदा है जो मनिया जांदा जिस नू मनिया ही नहीं तो की सुनिया इस तरह का सुनना तो फिर दीवारां भी सुनदियां धार्मिक दुनिया दे मनुख पत्थर दा पत्थर रह जांदा है जैसे एक मासूम बच्चा कहना ते यही बनेगा पत्थर दी तरह कुछ भी नहीं सुनाई देंदा पेस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा चल भी नहीं सकदा कुछ पकड़ भी नहीं सकदा बोल भी नहीं सकदा कोई भी बोध नहीं इसनों इते गोद इच इंज पे है जिमें एक पत्थर लेकिन पत्थर दे ए उम्मीद नहीं कीती जा सकती कि कदी ये चलेगा कदी ये दामन पकड़ेगा कदी लदी बले बोलेगा बच्चे ने स्वासे गोद इच रखे और ममता नाल रखे है आसा जुड़ी हुई है उम्मीद जुड़ी है आज नहीं ते कल चलेगा चलो आज नहीं ते कल बोलेगा आज नहीं ते कल सुनेगा आज नहीं ते कल इसनू असलियत दिखाई देगी सत्संग दे जो सत्संगी बैठे होंदे ने गुरु इसे ढंग नाल बर्दाश्त करदा है चलो कोई गल नहीं अज चलना नहीं आया कल चल लैणगे अज वेखना नहीं आया कल वेख लैणगे अज सुनना नहीं आया कल सुन लैणगे अवतारी पुरुष इन्हां सत्संगियां नूं इस ढंग नाल बर्दाश्त करदे ने और अवतारी पुरुष इस ढंग दी उम्मीद उन्हां नाल जोड़दे ने इस शब्द दे अर्थ कीते ने महान दार्शनिक फिलोसफर वकत दे गुरवाणी दे टीकाकार भाई साहब भाई गुरदास अपने आलमाना ढंग नाल इंज खोलदे ने देखबे को ना दृष्ट ना दर्श दिखाए देखो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए हे प्रभु तैनू देख सका मेरे को लखा नहीं ने कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए मैं सुन सका मेरे को सरवन नहीं ने और तेरे कन्ना तक मैं बोल पहुंचा सका मेरे को जबान भी नहीं है तीसरी पंक्ति बड़ी बाकमाल गल कर देने भाई साहब मन में गुरमत गुरमत में ना मन नेचल होए कैसे उन मन लेवलाई है हे गुरु जो तेरी सोचनी है जो तेरी मत है वो मैनू कबूल नहीं है जो मेरी सोचनी है जो मेरी मत है वो तेनू कबूल नहीं तो संबंध किस तरह जुड़े है रिश्ता किवें जुड़े है एक बच्चे दी सोचनी नाल एक 70 साल दा बुढ़ा सहमत हो गया है इसनू बुढ़ा आखण दी लोड़ नहीं है भी बच्चा है पर एक 4 साल दा बच्चा 81 साल दे बुजुर्ग और महान तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी संत नाल सहमत हो गया है इसनू 4 साल दा बच्चा आखण दी लोड़ नहीं है ये बुजुर्ग है उच्चे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकदा है जो उच्चा है सहमत हो सकदा है जो छोटा है धन गुरु अंगद देव जी ने इसनू बड़ा सोहना खोलिया नाल इयाने दोस्ती वड्डा रू सोनिया पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थो अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती अपने तो छोटे नाल भी नहीं हो सकती ये दोस्ती पानी दी लकीर होवेगी इधर लकीर कड्डी इधर मिट गई एक 80 साल दे बिरद दा 5 साल दे मासूम बच्चे नाल ममता दा संबंध हो सकदा है दादे पोते दा संबंध हो सकदा है मित्रता नहीं है दोस्ती नहीं है दोस्ती ते समतल ते हुंदी है बराबरी दे तल ते हुंदी है विचारां दी सांझ तो क्या 80 साल दा बुढ़ा ये 4-5 साल दे बच्चे दे विचारां नाल सहमत होवेगा अगर हो गया तो इसनू बुजुर्ग कहण दी लोड़ भी नहीं ये बच्चा है क्या ये बच्चा 70-80 साल दे इस बुजुर्ग दे विचारां नाल सोचनी नाल तरजे जिंदगी नाल सहमत होवेगा कथा ही नहीं अगर सहमत हो गया तो बच्चा बच्चा नहीं ये बुजुर्ग है दोस्ती समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, इसनु सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है। और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इसनु मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गए, बराबर हो गए। भाई साहब कहंदे ने, मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे उन मन ले उलाई है, जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने, तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है, तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है, मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े है, मैं नेड़े किस तरह आवा। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे उन मन लेवल आइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे वो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब कहने, अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कोल हाथ ने, ना मेरे कोल पैर ने, ना मेरे कोल अखा ने, ना मेरे कोल कन है, ना मेरे कोल रसना है, ना मेरे कोल सोचनी है। हे गुरु, मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, चलना आ गया हे प्रभु, मैनू खुशी हुई है, पर उच्च बड़ी है जो चलना आया, जिसने आज ही चलना सीखे तो कितना क चलेगा, एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने, सतगुरु तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहिंदे ने, इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बांह पकड़ लैंदा है परमात्मा, बांह पकड़ लैंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया, तो यह हुण महान झलक नूं भी वेख सकेगा। थोड़ी जिया झलक की अपने औगुण दिखाई देण लग पैने, एक झलक है, पहला प्रकाश की है। अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जाना, बड़े तो बड़े बलवान मनुख, सियाणे मनुख कदी उन्हां नूं अपने औगुण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्होंने अपनी कमजोरियां नूं कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन, कदी कोई गुनाहगार नहीं कहिंदा कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देंदे ने, ना गुनाह नूं ओ मनदा। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आखिया सी कतल कीता है, गुनाह कीता है, गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज भी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जाता है, गुनाह गुनाह नहीं रह जाता, पाप धंधा बन जाता है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है, धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होंदा है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर दा अनर्थ धंधा बन जाता है, तो फिर धंधा दिखाई देंदा है, गुनाह नहीं दिखाई देंदा, किरत दिखाई देंदी है, पाप नहीं दिखाई देंदा। जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे हैं, तो ये मनुख हुण गुनाह नूं किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने औगुण दिखाई देन लग पे ने, ये पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देने लग पे है, परमात्मा का पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देने लग पई है, परमात्मा की परम शक्ति दिखाई देने लग पेगी। कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देने लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति की पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति विपाशक बन दिए, शक्ति की पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति की झलक पैंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी की झलक पैंदी है। जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती, उनु प्रभु की शक्ति कित्थे? जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते, उसनु परमात्मा का पुन प्रताप कित्थे? जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा, वह चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा? कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जाता है जिसने अखां दा ऑपरेशन किया है, पट्टी खोली है मरीज की, आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल। जैसे वो अखां खोलदा है तो डॉक्टर पूछदा है, कुछ दिखाई देता? कहिंदा हां, अंधेरा अंधेरा। डार्क रूम दे चाकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने। कहिंदा अंधेरा। डॉक्टर कहिंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनू रोशनी भी दिखाई देवेगी। अंधे नू अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नू कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नू कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहिंदा ही है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे का भी बोध नहीं है। उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा। जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी, उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे? कहिंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, ते कहन लगे, तुसी मैनू बहुत अच्छे और प्यारे लगदे हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मंग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे, बहुत चंगा लगे, बगलगीर करन नू जी करे, फिर कोई और करन नू भी जी करता है, उस तो निछावर होने नू भी जी करता है, उस तो सदके होने नू भी जी करता है। सतगुरु कहिंदे तैनू कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु की संगत करदिया करदिया अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे। ऐ मेरे गुरु, अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मैनू मौका दिता है, मंगो तो ओ अखां दे जिड़ियां तैनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन। इन्हां अखां ने बहुत कुछ देखा है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिन्हों वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रही नहीं जांदी। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जांदा है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे चा जांदा है, ओ मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जांदा है, बुजुर्ग हो जांदा है। सतगुरु ए बुजुर्गी सारियां दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰਕੋ ਕੀਨੇ, ਤੈ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨ। ਯਾਤਰੀ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਦਾ ਮੈਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਲਈਏ ਤਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਖਾਸੀਅਤ। ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਜਾ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਖਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦਾਰਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਬਿੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਨਿਮਿਆ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ, ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੜਾ। ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ, ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਦਸ ਮਾਸ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਾ ਗਈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਖੂਨ ਤੇ ਬਿੰਦ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ, ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਤਨ ਜੀਵਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪੂਜਨੀਕ ਆਖਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ,
धन गोपाल धन गुरुदेव, हे गोपाल तू पूजन योग है, तू धनता दे योग है। फिर कहने धन गुरुदेव, हे गुरु तू भी धनता दे योग है, तेरे करके गोपाल दा पता चलता, नहीं ते गोपाल दा पता भी ना चले। फिर कहने धन अनाद भूखे कवल टेके, हे अन्न हे रोटी तुम ही पूजन योग है, धनता दे योग है, पेट दे च पै जाए ते गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं ते दोवे नहीं चंगे लगते। कबीर खुद कहते ने भूखे भगत न कीजे, ये माला अपनी लीजे, एले अपनी माला। भूखियां भजन बंदगी नहीं होनी। धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके। फिर एक चौथा भी पूज योग दसदे ने भगत कबीर, धन ओए संत जिन ऐसी जाने, तिनको मिलबो सारंग पाने। ओ संत भी पूजनीक ने जिन्हां ने इस असलियत नू समझे कि अन्न भी पूजन योग है, गुरु भी पूजन योग है, प्रभु भी पूजन योग है। तन रोटी है, ये बनिया रोटी तो है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। मैं एक दफा फिर दोहराना, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया, रकत बिंद करने में आ, तन किवें बनदा है लहू तो बिंद तो, ते लहू ते बिंद किवें बनदा है रोटी तो, और किस तो बनदा है भोजन तो। ये तन रोटी तो बने है, भोजन तो बना है, ये जीवेगा भी भोजन दे आसरे ते, बिना भोजन तो जीव ही नहीं सकता। जीवन भर मनुख नू जड़ी प्रबल चिंता होंदी है रिजक दी, रोटी दी, ये भी मैर्ज करते हैं, कशिश रोटी दी है। उहदा एक कारण भी है, पानी दी ते बारिश भी होंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं होंदी। पानी दे ते दरिया भी चलते ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलते। पानी दे ते सरोवर भी होंदे, झीलां होंदियां ने, सागर है, रोटियां दे सागर कोई नहीं, रोटियां दे सरोवर कोई नहीं, रोटी लभनी पैंदी है। होर भी सुन लो, सतगुरु दी बाणी कहंदी है हर जगह रोटी नहीं है, जिथे रोटी है उथे जाके लभनी पैंदी है। हर जगह नहीं है, हर जगह मनुख दा रिजक नहीं पिया, जिथे है उथे जाके लभना पैंदा है। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाणे, जिथे रिजक पिया जिथे रोटी पई है। नख नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाणे तहां खाने, नानका सच है। महाराज कहते ने यही एक सच्चाई है, जिथे रिजक पे है उथे ही जाके लभना पैंदा है, खाना पैंदा है, जाना पैंदा है। किरत की बांधी जग फिरे चित बंधन अधीरा, रिजक खिची फिरदा है मनुख नूं सब जगह। मनुखता दी सारी भज दौड़, पंछियां दी सारी भज दौड़, पशुआं दी सारी भज दौड़ रिजक। शरीर दा भजना दौड़ना रिजक, रिजक भजाई फिरदा, रोटी भजाई फिरदी है। मैनू फिर कहण देना, तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। रखत बिंद करने में आ, ये खून ते बिंद तो पैदा होया,
माखी रकत पिता बिंद दारा, मां दा लहू पिता दा बिंद किवें बनया रोटी तो, तन बनया रोटी तो, ये जीवेगा रोटी दे आसरे ते, सारी जिंदगी फिर मनुख रोटी लभदा ही रहिंदा, रिज़क ही लभदा। नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने, होर कुछ भी नहीं। मेरे पुत्र नूं मिलदी रहे, पोतरियां नूं मिलदी रहे, पड़पोतरियां नूं मिलदी रहे, रिज़क दी चिंता, रोटियां दी चिंता। तिजोरी विच सोने चांदी दा इकट्ठ, रोटियां दा इकट्ठ है, भविष्य दियां रोटियां, अज दियां नहीं, सत्तां पीढ़ियां दियां, चिंता रोटी दी और कुछ भी नहीं। भावें सतपुरश गुरबाणी कहिंदी है, कोई होर चिंता तू करनी है ते कर ले, रिजक दी चिंता ना कर, ना कर चिंत, चिंता है करते। जिसने जीवन बनाया है, जगत बनाया है, रिजक दी चिंता ओ करेगा। तू उद्दम ते करना है, चिंता नहीं करनी, रिजक लबना ते है, चिंता नहीं करनी। ना कर चिंत, चिंता है करते, सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग। देखो किसी दे घर मेहमान होइए, ते घर वाले नूं सारी फिक्र करनी पैंदी, किथे ठहराना है, की खिलाना है, की पिलाना है, किस तरह दा इस दा इंतजाम करना है। ये सारा ब्रह्मंड परमात्मा दा घर है, असी उस दे जीव, उनू फिक्र है, उनू फिक्र है। वो साड़ी चिंता दे च है, असी उसका चिंतन करिए, बस इन्नी गल है। उन्हें साडे नाल संबंध जोड़े हुआ है, सिर सिर रिजक संभा हेठा कर, काहे मन भव करिया। बिल्कुल चिंता करता है। ईरानी सूफी संत सादी ते इस नूं होर बड़े बाकमाल ढंग नाल बयान करदा है, कहिंदा गमे रोजी माखुर, कोई गम तू करना है, चिंता करनी है, कर ले, पर रोटी दा गम ना करें, रिजक दा गम ना करें। गमे रोजी माखुर, मजन और आके दफ्तर रा, के पेशे अस्तिफल ए जद, कल को नद पस्ताने मादर रा। सादी कहिंदा है, बच्चे दा जन्म बाद दे चौंदा है, मां दे अस्तना दे च रिजक दुद्ध पहले बन जाता है। के पेशे अस्तिफल ए जद, तिफल कहिंदे ने बच्चे दा, के पेशे अस्तिफल ए जद, कल कुनद पस्ताने मादर रा, मां दे पस्तान दे च, मां दे अस्तना दे च दुद्ध पहले बन जाता है, बच्चे दा जन्म बाद दे च आउंदा है। इत्थों तू शिक्षा क्यों नहीं लैंदा, रिजक पहले है, जीव बाद दे च है, जीवन बाद दे च है। गुरबाणी फिर इस तरह बयान कर दिए, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। रिजक पहले पैदा होंदा है, जंतु बाद दे च पैदा होंदा है, जीव बाद दे च पैदा होंदा है। गुरबाणी, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। मनुख नूं इस ते भरोसा नहीं आउंदा, इस गल ते भरोसा ना करना मानो परमात्मा ते भरोसा नहीं है, और वाकई परमात्मा ते भरोसा नहीं। पता है गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहंदे ने, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान ते मन प्रगटाया। तत्काल, तत् उसे वक्त, इधर भरोसा बज गया, इधर मनुख की समाधि लग जाती, लीन हो जाता, ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाता है। तत् ज्ञान इस मन प्रगट आया, जाके हृदय विश्वास प्रभा आया,
ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਵੱਜ ਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੋਲਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕੀ ਡੋਲਦਾ? ਭਰੋਸਾ, ਸਿਦਕ ਡੋਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਡੋਲਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਜਦਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਦਾ ਜੋ ਤਨ ਤੇ ਤਲ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਹੈ। ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੇ। ਆਸ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਏ। ਸਾਰੀ ਤਾਮੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈਏ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਰੇਲਾਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਦੋ ਰੋਟੀ ਦਾ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਹੈ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲੇਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੱਭ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ, ਲੱਭ ਲੈ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ, ਲੱਭ ਆਪਣੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਿਲੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਦਾਣੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਦੌੜ, ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਮਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਰੋਟੀ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਤਨ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੋਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ,
जमदिया ही मनुखी बच्चे दिया नजरां जो लभदियां ने यकीन जानो रिजक ही लभदियां नु कुछ भी नहीं लभदी रिजक लभदी अस्तन मूंह दे च पै जांदा है खुश हो जांदा है प्रसन्न हो जांदा है रिजक मिल गया अजे उस दे हाथ रिजक कमा नहीं सकते अजे उदे पैर रिजक तक पहुंच नहीं सकते तो कुदरत ने नियम बनाया अजे उसनू रिजक मिलता है मां दे हत्थां तो अजे उसनू रोजे मिलती है मां तो सहजे सहजे हाथ पैर काम करनगे रिजक लभना पएगा और रिजक हर जगह नहीं पिया जिथे है उत्थे रिजक खिंच के लै जाएगा जहां दाने तहां खाने नानक का सच ए मन ने तन दी संगत कर ली है तो मन भी समझदा है मेरी भी लोड़ रोटी है कतई नहीं कतई नहीं पेट भर जांदा है मन ते भरदा ही नहीं तन ते त्रिपत हो जांदा है खांदे हैं दो रोटियां नहीं चार खा लेंगे छह खाल त्रिपत हो गया मन ते त्रिपत होंदा सुन दे होवे कोई कईयां कोल और कईयां ने मैनू कहा ज्ञानी जी की करिए पेट ते भर गया मन नहीं भरिया स्वाद है रस है हुण तन दी लोड़ ते है ने भुख ते है ने तन दी लोड़ नूं मन ने अपनी लोड़ बना लिया है तो फिर की आउंदा खाई जांदा है मन दी भुख ते मिटदी नहीं नहीं मिटदी बहुत सारे मुल्कां दा अज मसला हो गया ओवर ईटिंग जरूरत तो ज्यादा खाना मसला खड़ा हो गया और साडे देश दे आयुर्वेद आचार्य इंज कहा करदे सन आहार रोग आहार चिकित्सा खाना पीना रोग है खाना पीना अमृत है खाना पीना जहर है खाना पीना दारू है क्यों ऐसा क्यों कह देता है भूख है खाना पीना अमृत है एक एक बुरकी अमृत है शरीर दी लोड़ा नु पूरा करेगी भूख नहीं है हुण एक एक बुरकी जहर है रोग है इस वास्ते वैद धनंतर ऐलानिया कहंदे सन होर रोगां दा कोई कारण नहीं 90% आहार रोग खाने पीने तो रोग पैदा होंगे आहार रोग आहार चिकित्सा आहार दारू आहार ही औषधि है खाना पीना औषधि है खाना पीना रोग है कीड़ा खाना पीना रोग है धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा फरमान कीता है बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार इस होर दे की अर्थ करोगे निकम्मे चकरा च ना पै जाना बाबा होर खाना खुशी खुआर भुख ते है नहीं होर हुण होर खाई जांदा भुख ते है नहीं दो रोटियां नाल पूर्ति हो गई गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक यही अर्थ ने मन मत नाल कोई अर्थ करे ते करदा फिर बाबा होर खाना खुशी खुआर भुख ते है नहीं खा रहे है एक एक बुरकी रोग होवे एक एक बुरकी जहर बनेंगे एक बुरकी शरीर दे च अनर्थ पैदा करेगी बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार जरूरत तो खादा होया तन नु रोगी बनाएगा मन नु विकारी बनाएगा शक्ति अदक बनेगी उदी लोड़ नहीं तो मैं अर्ज करा तन भोजन है मन भोजन नहीं है
पर भुलेखे करके तन दियां लोड़ां नूं मन ने अपनी लोड़ समझ ले तो उहदे नाल की आउंदा है। तन ते लोड़ां दे तल ते सीमित रहिंदा है, तन दियां लोड़ां मन दे तल ते लोभ बन जांदियां। लोभ मन दे च आउंदा है, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा है, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारियां ही तन दियां लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं है, वो की नहीं सीमित। मनुख लोड़ां करके बेईमान नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। मनुख लोड़ां करके धोखेबाज नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। मनुख लोड़ां करके पापी नहीं बनदा, लोभ करके बनदा। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहने, पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लब ते पाप दोवें कट्ठे रहेंगे, लोभ ते पाप दोहे कट्ठे रहेंगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ां करके मनुख भ्रष्ट नहीं आउंदा, लोभ करके आउंदा। लोड़ां दी ते सीमा है, कितनियां लोड़ां ने, बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तां भी लोभ शांत नहीं आउंदा, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह रही है, लखां पति भी मंगता है भुखा है भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है भुखा है भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहिंदे ने, सगल सृष्ट को राजा दुखी है। सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए, दुखी दा दुखी रहे। कारण, शरीर दियां लोड़ां नूं जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है। तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां समझ बैठा है। तन ते बनया रोटी तो, भोजन तो ठीक है, तू रोटी तो नहीं बनया। फिर तू किस तो बनया, कहो कबीर ए राम की अंश। तू ते राम दी अंश है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हुण मैं इसका दूसरा पहलू बयान करा। जन्म तो ही तन दे अंदर भोजन दी भुख है। जन्म तो मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। एक कथा तन वास्ते नहीं, इहदे नाल कोई पेट नहीं भरना। अगर पेट भर सकदा है तो फिर लंगर पानी दी कोई लोड़ ही नहीं। इस कीर्तन नाल तन दियां लोड़ां दी पूर्ति नहीं आउंदी। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप कोई तन दियां लोड़ां नूं पूरा नहीं करदा। इस चक्कर च ना पैणा, इह मन वास्ते, इह मन वास्ते। भोजन मेरे सामने पिया, पर भोजन नाल मैं अपना तन ना जोड़ा, भाव बुरकी नूं मूंह च ना पावां, मेरी भुख नहीं मिटेगी। कीर्तन मेरे सामने हो रहा है, पाठ मैं कर रहा, पर मैं इस नाल अपना मन नहीं जोड़दा, यकीन जानो बाणी पढ़द्या होया भी मन रोंदा पिटदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा, चिंतातुर रहेगा, सोगी रहेगा, भावें सारा दिन पढ़दा रहे बाणी। कहिंदे ने मैनूं मिलदे ने कई, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं कि तेरा चेहरा ते दसदा पे एक पंक्ति भी नहीं तेरे मन ने सुनी। उसे तरह ही सोग दे चै, चिंता दे चै, हंकार दे चै, विकार दे चै, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 36 प्रकार का भोजन मेरे सामने पे है, मैं बुरकी मुंह च नहीं पाई। चलो मुंह च भी पा ली है, स्वाद आ गया सर, पर मैं थले नहीं की थी, कंठ तो थले नहीं की थी। भुख नहीं मिटेगी, भुख नहीं मिटेगी। एक एक बुरकी ही अंदर जाएगी, भुख बाहर आएगा। मन दी भुख ये भोजन नहीं है।
जन्म तो तन दे अंदर रोटी दी भुख है, भोजन दी भुख है, जन्म तो शरीर दे ना मन विच भजन दी भुख नहीं है। इतनी मर्ज करा नहीं है। विद्वान इंज भी कहंदे ने जेदे अंदर हर वक्त भोजन दी भुख है, भुख तो मुराद है भिखारी, हर वक्त मनुख भिखारी है, पर किसे मन दे अंदर भजन दी भुख पैदा हो जाए, सिर्फ भुख बादशाहां दा बादशाह हो जाता है, शहन शाहां दा शहन शाह हो जाता है। इनू मैं दूजे नुक्ते नाल बयान करा। संसार दे मार्ग ते चल के बहुत कुछ प्राप्त हो भी जाए, अखीर दे च पता चलता है कख नहीं मिले, कुछ भी नहीं, हथ खाली है। निरंकार दे मार्ग ते चल के, धर्म दे मार्ग ते चल के जे कुछ नहीं भी प्राप्त होया, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, नहीं परमात्मा मिलया, परमात्मा दी प्यास मिल गई है, उदी तड़प मिल गई है, उदी भुख मिल गई है। भगतां ने इसते भी शुकराना किया। पता है क्यों? किसे मनुख नू भोगन भुख ही ना लगे भोजन दी तन दे तल ते, तो आयुर्वेद आचार्य कहंदे ने तन रोगी है, रोगी बीमार, 104 डिग्री का बुखार चढ़े होया, 36 प्रकार का भोजन परोस के उसके अगों रखे, कहंदा नहीं मैनू भुख नहीं है। अगले कहंदे ने 4 दिन का तू कुछ खादा नहीं, मंजे ते पिया, खा, कमजोर होंदा जा रहा। वैद कहंदे ने खा, कहंदा भुख नहीं है, इतना जोर दा ताप उन्हें भुख नू मार दिता है, भुख दे ताप नू दबा दिता है। फिर जस उसनू प्रेरदे हैं नहीं खा, नहीं तो शरीर निढाल होवेगा, कमजोर होवेगा, वो खांदा है, कहंदा स्वाद नहीं। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, आयुर्वेद आचार्य कहंदे सारी जबान स्वाद नहीं मानती, कोई थोड़े जिहा तन धूने जबान दे च ओ रस लैंदे ने, ओ बारीक तन तो जोर दे बुखार करके कमजोर हो जांदे ने, शीतल हो जांदे, रस लैण दी उहनां च समर्था नहीं रह जांदी, कम नहीं करदे। तो बंदे नूं भोजन दा स्वाद नहीं आउंदा, जदके है स्वादी। जो तंतु स्वाद माण सकदे ने वह रोगी हो गए ने, रोग करके कमजोर हो गए ने, शिथिल हो गए ने, स्वाद नहीं आउंदा। कहिंदा स्वाद नहीं है, भुख दा ना लगना ते स्वाद दा ना आउना, इस गल दी पहचान है तन रोगी है, बीमार है। हुण दूसरा पहलू, जिस मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है, नाम दी भुख नहीं है, मन रोगी है, रोगी है। ऐसे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है जिन्हां नूं भोजन दी भुख नहीं लगदी। ऐसे रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया है जिन्हां नूं भजन दी भुख लगदी नहीं, लगदी नहीं। किधरे एक दिन रोटी नहीं खाधी, सौ नूं दसदा फिरदा, अज ते मैं